0: कैसे बात
1: नहीं
0: होगी?
1: तो बुआना ना बसुमो मैं शिका कहा से तो मैं कही उस दूनू दूने मिन मेरो थे दवे मिसे था मुचे ही ये वे वर्ग मुचे ही सुबह सुबह भगा।